अरुला फवन्त दिवेहि तरिये के बुनं काकुहे अहालु मुंखेरे मशपुनं पारुला फवन्त दिवेहि तरिये के बुनं।

0: come tige la fai ai cupa go tuga mati mi fada kan kama hi tere kan foro ko dir maki emme maslahatu huri adi shari go tun emme gae go taki ai
1: zaka medge program ga mi balali zakat ge behin wering ge tere darani wering ijtimai beinun ta kan naga fa wa darani ta zakatun dinuma program ga mi maulu maluma tevu ma bair wadan nevi maldis zakat house ge faratun ashe hizzatin adunan adi ashe mosa moiz de befrunnavis war bada shukriya ऐसा प्रोग्राम निमालाफा वकीलानी अन्य हफ्ता के मिसिल्स लगमलिंग आ प्रोग्राम का है कि बदल वेलमा प्रोग्राम उफद्दा में होशेले अलगनस मामोसा वस्सलामुलेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु
2: इंहा सतर्स एक सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: दिवेहराज्य के अडू

0: ठीक है तेरे को मैं खुद चक के सामा मामा में ने वारा वारा लो बेवा खुद चक का वाने का मके ऐ शक्के उसे एक का मेनो मामा में ना वे सामा एक का निंगेर ने एक का मको हो रहा को दिन वे स्वाने हामा मामा में देखे लो बेवा कं बुनंग ये हामा लो बेवा कं बुन मके मामा में के हिता वे सामा वारा उफा वेरे कं गेरवाने का मैं मामा एक का निंगेर नो बापा क्या आई गए सादी आई लग दें ते भी को दिन दत्ता में कोको में बेबी में क्या रिगा स्वाने हामा एको तब बुनंगे मैं इतके प्रोग्राम का इस हमा कुरिया वारा मोहे वारा मजा बैठे किंगे बहुरिंगे मम्मी इतके प्रोग्राम फुरता में कुछ का वाह के दक्का तुम के कुरिंग दत्ता दानी वाह क्यों यात्री को दिन ना मैं इतके प्रोग्राम के वाह के आगे फिशुंग गेनेस देंगे पर रीते वाह के मैं दोस्त में होती मैं हो रहा कुछ दिन तैयार का मैं उम्मीद करा मैं और मैं थी मैं इतके प्रोग्राम के वाह के आगे फिशुंग एद्दो है के हावीर वागुतो कुड़ा कुड़ा खाईरा एना के दोंबे खायाना देखो दिन अतुका हिफाला के मागु के इफरातु मामा के दां हिंगागे कौन में दो है के वस हावीर वागुतो मे को दिन हास्य करनी मामा क्या रिया कोसलुमा मामा के दिया मगुमत्ती का मे देखो दिन ना वोलटे वेट्टे फोवा फेनीचे मामिहा हिसाबुन दिन कामानी किहने तो एर निम्माणी तिकुदिंगे हेमा तिकुदिं मिवाह का कोरिया गेंगोस निम्मा लाने के पलालन तत्तम हिरे के मदोएफा हेमिमा मेद के प्रोग्राम का बैरवेला हुरिहा कुदिन्ना एको मिमा सेक्के फुरिहा में कोलो में थी तेंग हम कुरिम वस तत फाहा कोले को तत तिकुदिन्ना प्रोग्राम के तेरे गेनेस तिनुमा तिकुदिं के हुनर तफ फनवालुम के फुर्सतो हमा कोमे वगो तेगस अति हुलवाले फेंगे एमा दिवे राजे गाडुगे टेलीग्राम नंबर की हते तिने एकें हाय नोए फहे नोए मे नंबर तिकुदिं के हुनर त रिपोर्ट कोला फ वीडियो कोला फ फनवाल देवे मेकमा वकी वको तनेंगे कुदिं हम कोमे वगो तेगस तिकुदिन ना मेकन कोले वेने देन दत तिकुदिन ना कियाल देनंग मे दुगे मसेके तोगे तफसील गे फुरतम गुरुतुगे मसेके गुरुतुगे मसेके तक बलायरो तिम मसेके तें एवन हम कोनेस फा कोले गोते हम फुरतम मसेके दादो गे दादो ग मे वागोते के तिकुदिन ना दत में कियाल देनंग ओळवाला फावा रावरे नोने बंजे कियाल देनी मा तिकुदिन जहेनी एरावर नो त बांदी तरतीब कोफा रागु ग कियाल देंगे हमार रावरे विया रावर ग राग बंजे विया बदी ग राग देन देवाणम मसेके बसमाला बसमाला मुग मेवागोते की दत्तमें बगीचा के तेरे के बगेंगुलें कुडवर के गुड़ी एंगे मी गुड़ी के तेरे का एक अच्छी के नंतल लिएफा होनाने हमा वेदान मी हक कव्वेस इच्छा कव्वेस ताड़ा कव्वेस तो एक दत्त ते को दिन ना मिली बे लफ्से बैनो को कंधे को दिन चाहिए जुमले इंगा डाल देंगे देन तिम्बन मसिक्का तो कम होती फीकोई में मसिक्का तो का दत्त क्या आल देर ना लिस्टेंगे लिस्ट क्या आल देर हम कुरीन दत्त बुने लार ना मिले स्टोन ते कुदिन फाह कॉल्लम वे कौन ताना कुम फिर ना ने चेतो ऐं वे मा इसा का वेदार ने ऑफी हा नोने स्कूल नोने गया नोने बादी गया वस वेदार ने गोता ऐं मदा तब बुना ताने का हो रहे ची ते कुदिन फाह का कॉल्लन चेनी देन वाह क्यों मैं मसे का दुगा हमें ठीक तरह को मैं कुछ को स्कॉलन चेन काम की दत्त कोरेंस में किया आल देने वाह क्या के फेशुं दो ऐं मा वाह क्या के फेशु मा गुड़वा फा तिकुदिन हम विवाह का कोरिया गेंदन चेनी वाकी लफ्जें ही मना करनु चेन हमें कन वाह क्या के फेशु मा गुड़वा लन चेनेंगे मिहार में ते में दिके प्रोग्राम के फुर्तम बैरिया गुड़ा ले फा अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: राणा
1: बाबा
0: केने हालो
1: अल्हम्दुलिल्लाह रंगालो
0: राणा की कोल्लनी
1: प्रोग्राम का बैर वाले
0: प्रोग्राम का बैर वेगे मिहार में ने तो इतुर का में कोरा दो है नो मिया तो आदि मेगा डी का तो
1: बाबा
0: सा बॉय फिंता
1: मेरे को तो शुबॉय
0: किरो तट्टे बॉय तो इतुर अच्छे नो कंगा दे ओके राणा हिंगा मसेक्का तो दमा दो
1: लंबा
0: मा गुरु अत्तम मिदानी इंगे हाँ अलिफंग ये बहुत हो रही हाँ कोरे मा कोंगा कोरे डगानी
1: हाँ
0: हाँ हिंगा हाँ गोए मसेक्के बाला लो फीको फीको मिले बोने एहमवीमा फीकोय के लिस्ट दत्त कियाल देनंगे ए लिस्टोन रणा फाहग कोल देनवी मस बाणम बेणुं कुरान एच्चे तैयार ता मस बाणम दामुता रणा
1: लंबा
0: मस बाणम दामुता ಬಪ್ಪೆಯಾಕ ಮಸ್ಪಾಡಂದಂದೋ ಎಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಅಣದ ಎಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇದ ಮೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಕಿ ದೋಷಿ ಆಫಲು ನಣು ಬಾಲಿಸ್ ಬುಳಿ ಸಂಸ ಎಂಗ್ ಮಿತನು ಕೊಂಗೆಚ್ಚಿಸೆ ಪೇಣು ಕುರಾಣಿ ಮಸ್ಪಾಣು
1: ಬುಳಿ
0: ಬುಳಿ
1: ದೋಷಿ
0: ದೋಷಿ
1: ನಣು
0: ನಣು ದೋಷಿ ಆಫಲು ನಣು ಬಾಲಿಸ್ ಬುಳಿ ಸಂಸ ಎಂಗ್ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಕುಡ ಕುಡ ಖೈರಾ ಎಣಗೆ ದೊಂಬೆ ಖಯಾಣ ದೆಕುದಿನ ಅದುಗೆ ಹಿಫಾಲಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಎಫರಾದು ಮಾಮಗೆ ಹಿಂಗಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹೆಗೆಸ್ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಮೆಕುದಿಂಗ್ ಹಾಸಕುರಣಿ ಮಾಮ ಕ್ಯಾರಿಯ ಗೊಸ್ಲುಮ ಮಾಮ ಗೆದ್ದೆಯ ಮಗುಮತಿಗ ಮಿದಕುದಿನ್ನ ಒಲಟೆ ವೆಟ್ಟಿ ಫೋವ ಫೆಣಿಜ ತೆಂಕಿನ ವಾಣಿ ಎದ್ದುಹೆಗೆ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಕುಡ ಕುಡ ಖೈರಾ ಏಣದೊಮ್ಮೆ ಖಯಾಣ್ಗೆ ಅತುಗ ಹಿಫಾಲಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಎಫ್ಫರಾತು ಮಾಮ ಗೆದ್ದಾಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹೆಗೆವೆಸ್ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಮೆಕುದಿಂಗ್ ಹಾಸಕುರಣಿ ಮಾಮ ಕ್ಯಾರಿಯ ಗೊಸ್ಲುಮ ಮಾಮ ಗೆದ್ದೆಯ ಮಗುಮತಿಗ ಮಿದಕುದಿನ್ನ ಒಲಟೆ ವೆಟ್ಟೆ ಫೋವ ಫೆಣಿಚ ದೆಂಕೇಣ ವಾಣಿ ಕೇಣಂಗ್ ಹದಾಣಿ ಮಿಕುದಿ ಕೊಂಕುಜ ಒಲಟ್ ನೆಗಿ ಖೈರಾ ಒಲಟ್ ನಗಾಗೆ ಎ ಒಲಟ್ಗೆ ವೆರಿಫರ ಹೋದ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿದ ದೆಮಸಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಕಾಮ್ಯಾಬಿಗೆ ಎಮ್ಮ ಗುರುತ ಗೊಸ್ಸರಣ ಮೆದುಸ್ಮ್ಯೋತಿ ಉಫಾಯ ಜತ ಎಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮೆಂದೆ ವಾಣೆ ಅಡು ಹಾಲಂಗಿಣ್ಣಂಗೆ ವರ ಉಫಾಯ್ ಜ ರಣ ಮೆದುಸ್ ಬದಲು ವಿಮ ವಕೀಲಾಣಂಗೆ ರಣಾಯ ವಕೀಲಾಫ ತತ್ತ ಮೆಮ್ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ಗಣಿಸ್ತೇಣಿ ಮೆದ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತ್ತಮ ಹದಿಯ

0: हंगार अंगार दो मिंदुल कुरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम पार गड़ तिरी हूं हंगार
1: हम एकनी दिवे ही राज्य क्या डूं
2: ए प्रोग्राम कुं गिना मालूम मात तकें एहुं तेरी ना फोर को दिनुमा दिवे राज्य गड़ूं गिनस्तनी अदुगे राज्य
1: राज्य के एक ही कंकड़ताओं का आमुन्नंग अमास कों हिंगा हरकेता कलंडर
2: सरकारों के एक ही इदारा तो कुंदे खिदमत तंग हो दाने फंसे हैं कोई ता
1: खिदमाई गैजेट का कानूनी गतन शायद को फावा लियों ता आवास खाली है को
2: आमु दिलियों मुगा कोम्बे मीह का बेनु वाने मोहिम्मो मालु माता अदुगे राज्य
1: आदित्य बुरास बच्चा
2: कम में दोहे के हैं तो नुआ कटे फाने रहे हैं
1: स्टूडियो ए वगुतो
3: हाँ तेरे वन्ना उड़ा को कसरत कर लेनी है बंद को होने रहते हैं
4: रानी आ किया बल रानी के हिंग हम जो हम का मार्डुआ हाफ़न
5: जिहान के मामा मेरे ना बदल को लंके इंगोस पलाशे बोलने
6: ड्रिंक कुछ जग कुड़ों की पहले था
3: कुछ जग बैनु ही देने का
6: अंगे कुछ जग कुड़े तीव्र पड़े
1: हुए यहाँ मिहारों के तफात इहुसास ताऊ के रेडियो ड्रामा था दिव्यराज्य गाड़ों के यूट्यूब चैनल लो मिहारो अड़ोस वाले वेने दिव्यराज्य गाड़ों के यूट्यूब चैनल अवहा सब्सक्राइब को लबा
0: فقه السنة
1: يعني اكل لك فانا الله رسول نبي ابو هريره كفان گه اريهون رواوي گه وي اكل لك فان ويدار وي هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوروي اسوديه امته گه ميهكو اينا گه هيتا
7: اسلامي قوم تکو گه ميدن گه تن عمل كوري من داني دن اوتي حگو نوا بايك دويجكن فهم ميگوني دين فهم ايگوني ايم وجكم گا وانما ادمرن گه تريگه دگو تکن ايبا اشاره كوري فوي
0: فقه السنه
1: كم مه حكور دو هي گه مندور كوري 11 گدي فنره
8: انها 70 تک 40 كيلو هرتز ميديم ويف ادي 89 ميگا هرتز اف ام باند
1: हमारे कनी दिवे ही रात से गया डूं
8: इंतजार को लवा
0: रसूल बेकल ना नबी बेकलों के सीरत की इरशादा नसेहत के दम्मरे
8: ये दम्मर के अलिंग हो दे तजुर्बाए के हयात के रास्ता फस्सिया गेंगुस्ते ने आरु काटिए
9: ये आरु काटी गई ही माध्यम या कोशार कुरात के चकी हेयो हलाल तक के चंगा दम्मा
10: रिपीट अंगार दुगे हेंदुन अकड़ तिरी हूँ आदि बुद दुगे रे दिहकर तिरी हूँ
8: हमें कनी नुदिह में घर्स दीनु गेड़ू
1: राज इस्लाम वेदुओं के खास प्रोग्राम तोगे तेरे
8: तिबागे वजूद इस्लामी दम्मरुं अली कोल्लुमा
11: तिबागे हितुके खाड़ुकं फहिला हुणदां कोल्लुमा
1: तिबागे नजरियात सीधा कोल्लुमा
12: फेही आली
11: 13 सितंबर 2026 आदित दो मेंदुरुं अम्रा एकित जहारु रिपीट हम एदो होगरे दिहे जहारु
1: हम एकनी दिवे राज्य के अड़ो
8: इंहा 70 40 किलो हर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
1: इंतजार को लवा
8: दे रबीउल आखिर दिविराज इस्लाम विदवस
0: दुहा गुले खासा प्रोग्राम तव तरें
13: दिवे कौमियतु के ए बहा के गुतुगा इस्लाम दीन देमियोती की बेगिन कमा दिवेहिंगे एबावंतकमगे अस्तुकमगा इस्लाम देहिमिने सबबुता
0: आदित्य विदेरे अशिज जहर स्टूडियो मगतु
8: ইসলাম দীনামেতু তিবি জুয়ানুগে হিতুগন্ন লোপ ইতুরুকুরমা ইসলামি তারবিয়ত কুদিন্ন দিনুমগা সামালকান দেঞ্জে কাঙ্কমা ইসলাম দীনা বীরট্টে আদিতকা জুয়ানু দুরহিল কুরুমগে মুহিমুকা
0: আদিত বিলেরে 11 জহায় স্টুডিও এমবগুতু
13: দিবহ রাজ্য ইসলাম বিদুহুগে খাস প্রোগ্রাম
12: নসিবুগে আহুরি
8: দিবহ রাজ্য গ্যাডা দীনু গ্যাডু আদি দিবহ এফএম বগুতু
13: ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿತ ನುವಸತೆ ಕಹರ್ ಫುರೆ ದಿವಸ್ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯ ದಿವಸ್
14: ಹಿಮಬೇ ಜೈಫಾವಾ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹಕ ಬಲಿ ಫೆತುರುದಾಣೆ ಮುದ್ದತಕಿ ಕೊಬ
15: ಬಿಹಿನೆಗುಮ್ಗೆ ಹತರು ದಿವಸ್ ಕೂರಿಂಗ್ ಬಿಹಿನೆಗುಮ ಫಹು ಹತರು ದುವಹಾ ಹಮೆಯ ಬಲಿ ಜೈಫಾವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಫರಾತೊಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹಣ ಬಲಿ ಫೆತುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತೋವೆ
16: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
17: ಮುನ್ನ ಕೊಬ್ಬ ಕಿಹಿನಕ್ಕೆ ದೆಳಹಿಯ
18: ಅಲಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನ ರಾಂಗಳ ಕಾಲೊಮ್ಮೆ ದೆಳಹಿಯ
17: ಅಫನಸ್ ದೆಳಹಿಯ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ ಕೊಂಬಡಾಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಕ ಅಫುಂ ಅತಃ
15: ಮೊನ್ನಾತಿ ಹೇ ಬರಕ್ಕ ಹೋವೆಣ್ಣ ಹಿಂಗ ಮೆನ್ನೆ ಅಫುನ್ ತಿಕಂ ಕೋಲನ್ನ
18: ತಿಕೋದು ಹೌದ ಹೈರಂಗಳ್ಳೆ ತಿಹೆಂ ಮುನ್ನ ಕಹಿ ಆಹ್ ಹಾಲ ಬಲಾಫೆ ಮುನ್ನ ರಕಂಕಂ ಕೋದೆನ್ನ ಹೆದಿ ಮುನ್ನ ವರಹ ಉಪಾವೆ